नमस्कार, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन शनिवार है, शक संवत 1948 दे वैसाख महीने दी 12 तारीख है। तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे मई महीने दी 2 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे ने। सरयास्ती सभा दे प्रोग्राम हुण शुरू हुंदे ने।

एफएम बैनिक सुदूरशारिया 7 MHz दिन की शुरुआत परमात्मा के नाम सिमरन के नाल करांगे। 6:05 ते भक्ति रस के नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना नूं सरवण करांगे। जानकारी के नाल भरपूर प्रोग्राम होएगा। गुड मॉर्निंग जलंधर।

8 बज के 30 मिनट ते साडे प्रादेशिक चैनल तो पंजाबी दे विच खबरां सुनोगे और 8 बज के 40 मिनट ते पंजाबी गीत संगीत दा प्रोग्राम होएगा अड्डी टप्पा। ਨੌ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਐਫ ਐਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਔਰ 9:02 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਮੈਸੇਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਦਸ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਐਫ ਐਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਗੀਤ ਬਹਾਰ 10:02 ਤੇ। ग्यारह बजे तुसी सुनोगे एफ एम न्यूज़ हेडलाइनस और 11:02 ते फोन इन प्रोग्राम के जरिए थोड़िया फरमाइशा पूरा करता हुआ प्रोग्राम होएगा पंजाबी तड़का। बारह बजे तुसी सुनोगे एफ एम न्यूज़ हेडलाइनस और 12:02 ते प्रोग्राम होएगा होम स्वीट होम। एक बजे का सिलसिला प्रोग्राम मिड डे मैलोडीज थोड़े मूड नू करेगा मेलोडियस और 1:40 ते साडे प्रादेशिक चैनल तो पंजाबी दे विच खबरां सुनोगे और 1:50 ते प्रोग्राम मिड डे मैलोडीज थोड़े मूड नू इसे तरह मेलोडियस बनाता रहेगा। दो बजे तुसी अपने दिल दे अंदर दे शायर नू सांझा कर सकोगे प्रोग्राम होएगा दिलाज शायर है। तीन बजे का प्रसारण होएगा रेनबो दिल्ली तो प्रोग्राम सुनोगे रेडियो डॉक्टर। चार बजे तुसी सुनोगे एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ तो प्रसारण प्रोग्राम होएगा हेलो जलंधर। ठीक 5 बजे युवा वर्ग अपना प्रोग्राम लेके हाजिर हो जाएगा प्रोग्राम होएगा युव वाणी। छह बजे लव यू जिंदगी प्रोग्राम सुनोगे 102.7 मेगाहर्ट्ज से और 6:20 से साढ़े प्रादेशिक चैनल तो प्रादेशिक खबर सुनोगे और 6:30 से लव यू जिंदगी प्रोग्राम इसी तरह जारी रहेगा।

मेरे मन तू मान ले मेरी उत्तम सीख, मेरे मन तू मान ले मेरी उत्तम सीख, श्री राधा सो मांग ले कृष्ण नाम की भीख, कृष्ण नाम की भीख।

कर्म की गठरी ला दिखे जग में फिरे इंसान, कर्म की गठरी ला दिखे जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान, विधि का यही विधान।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

ढिंचिक ढिंचिक गाना सुनना है कि हिंदी गाना सुनना है? कोई भी गाना चलेगा, बस तुसी अपनी सीट बेल्ट लगा लो और फोन नु थोड़ा सा पासे रख देना ताकि तुसी ड्राइविंग और राइडिंग करदे करदे अपना फोन जड़ा है वो ना चलाओ, ठीक है ना? तो फिर एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक बनता दिल से दिल तक।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

अरे वाह, ट्यून कीता होया तुसी सारा ने 102.7 मेगाहर्ट्ज़ दिल से दिल तक और नाल दे नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए भी दोस्त बने हुए ने दिल से दिल तक। ओहो, टाइप कर दे वे हो लै, मैं क्या टाइप करना शुरू करता, करो करो करो टाइप करो, फटाफट तो टाइप करो ताकि थोड़े जिहड़े सुनेहे ने थोड़े मैसेजेस ने मेरे कोल इस प्रोग्राम दे विच पहुँच जान, ताकि मैं इन्हां सारे मैसेजेस नूं प्रोग्राम तो साझा कर सकां। भाई मैं भी तो कुछ नवा सीखना तुहाडे कोलों। 9855101027 तुसीं सारिआं ने घल्ले ने मैसेज। अरे वाह, तुहाडे मैसेजेस ही ने जिहड़े कि प्रोग्राम नूं खूबसूरत बनाउणगे, सोहणा बनाउणगे, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट मैसेज। अच्छा, कोई इहो जी आदत है जिहड़ी कि तुहानूं लगदा है कि तुहानूं बदल लेनी चाहीदी है? कोशिश कीती कदी अपनी कोई इहो जी हैबिट नूं चेंज करन दी जिहड़ी कि लगदा है कि मेरे अंदर बुरी आदत है पर मैं इहनूं ना बदल लै। लाइक बहुत सारे लोग इहो जिहे हुंदे ने, नूँह चबण दी आदत हुंदी आ, बैठे बैठे नूँह मूँह च पाए खाई जाने, बैड हैबिट है ना, इहनूं बुरी आदत कहा जाता। कोई होर बुरी आदत तुहाडे अंदर होवे और तुसीं उहनूं छड्डणा होवे, रस्ता दसूंगी सौखा सौखा। हाँ बिल्कुल, कहने ने कुछ अपनाना होवे ना तो सानू उस चीज़ नू अपनाउण दे लई रेगुलर होना पैंदा है, कंसिस्टेंसी लियाणी पैंदी है। और वो कदों आउंदी है? उदों आउंदी है जदों 21 to 22 दिन का सफ़र असीं जिहड़ा आ तय करदे आ। हाँ बिल्कुल, यानी कि 21 to 22 दिन का सफ़र तय करदे आ रोज़ अपनी रेगुलर, असीं उहनू अपनी

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

हो सकता है तुसी कर पाओ। इस करके कहंदे है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। सो सलाह लैनी कोई माड़ी गल नहीं है, पर किसे दा जिहड़ा उहदे लई नॉट पॉसीबल हैगा हो सकता है तुहाडे लई पॉसीबल बन जावे। सो ट्राई एक बार, जो मन च चीज़ आ जाए ना जरूर करनी चाहिए है। सो इदां ही सुनते रहो 102.7 FM रेनबो, दिल से दिल तक आ रहा जी मोहित चौहान की आवाज़ के ट्रैक तुहाडे रेडियो सैट पर।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

तूने जो धूप का टुकड़ा उछाला था मेरी तरफ, वो मेरी मेज पर आकर चुपचाप बैठ गया, जैसे रास्ता जानता हो। मैंने उंगलियों से छूकर देखा उसे, थोड़ी सी गर्मी थी, जैसे किसी ने अभी अभी याद किया हो। वो दिन भर कमरे में घूमता रहा, कभी किताबों पर, कभी दीवार पर, और हर चीज का रंग थोड़ा नरम कर गया। शाम तक समझ आया, तुम चीजें नहीं भेजते, दिन भेज देते हो अपने हिस्से का। बिल्कुल जी, ये जिहड़ा हिस्सा हुंदा है, वाला वक्त जिहड़ा हुंदा है ना, हल्की हल्की धुप जदों साडे घर ते दरवाजियां ते खिड़कियां ते पै रही हुंदी है ना, तो उहदा एक वक्रा ही जिहड़ा कह सकदे आ सकून साडे दिल नूं मिलदा है। तो इस टाइम गाने भी उही जिहड़े ने मिड डे मेलोडीज़ दे विच तुहाडे लई प्ले किते जांदे ने, जो तुहाडे दिल दे बहुत ज़्यादा करीब हुंदे ने। प्रोग्राम दी शुरुआत करदे आ इदां दे ही गीत तों, जो अपने आप दे विच इक कविता है।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: वंस अगेन वेलकम बैक है जी ट्यून इन के तहत उसी 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है जी मिड डे मेलोडीज़ एवरग्रीन मेलोडीज़ जड़ियाँ ने तुहाडे नाल शेयर असी कर रहे हैं तुहानू सुना रहे हैं ते हुन टाइम हो चुका है 60s दी ही इदां दी ही एक गीत दा जिन्हों लिखा है हसरत जयपुरी जी ने मूवी है दुनिया जो कि 1968 दे विच रिलीज़ हुई सी ते जिहड़ा गाना है गाया है रफ़ी साहब जी ने फलसफा प्यार का तुम क्या जानो
1: फलसफा प्यार का तुम क्या जानो फलसफा प्यार का तुम

जी प्रोग्राम चल रहे हैं मिड डे मेलोडीज ट्यून इन के तहत उसी 102.7 FM। खूबसूरत जय गीत 90s दे 60s दे 70s दे 80s दे ओ गीत जो हमेशा साढ़े दिल दे करीब रहिंदे ने ते जदों भी उन्हां नूं सुनदे आ ना ओ हमेशा ही इदां लगदे ने कि किन्ने फ्रैश ने ओ आवाज़ां ओ हमेशा ही साढ़े मतलब जहन का हिस्सा रहिंदियां ने। तो इस टाइम जदों दोपहर का यह वेला हुंदा है ना तो मिड डे मेलोडीज़ प्रोग्राम दे विच जदों यह गीत असी सुनदे हाँ तो दिल में एक वक्री जी ही शांति हुंदी है। वैसे कहिंदे है कि जिहड़ियां साडियां अक्खां हुंदियां ने ना ओ साडी जबान का काम करदियां ने, कई बार ओ भी बयां कर दिंदियां ने जो साडा दिल किसे नूं कहना नहीं चाहुंदा। कहते हैं लोग कि खफा है तू मुझसे पर तेरी आंखों ने तो कुछ और ही कहा है मुझसे। वैसे जदों कोई अपना करीबी साढ़े तो नाराज़ हो जाए ना तो दिल नो मतलब अच्छा भी नहीं लगता, फिर दिल करता बस किसी ना किसी तरीके जड़ा हैगा उन्होंने मनाया जाए। सो अगला गीत भी कुछ इदा का ही है जो कि फ्रॉम द मूवी जॉनी मेरा नाम तो आ रहा है तुहाडे रेडियो सैट से।

0: हम पकड़ेंगे।
1: छोड़ो ना।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: ऐसे तो नाजुक नहीं हाथ सरकार के, मौके भी

अर्ज किया है, महफिल में आप आए, महफिल में आप आए तो रंग नया सा छा गया, महफिल में आप आए तो रंग नया सा छा गया, हर चेहरे पे मुस्कान का नूर सा आ गया। आप सबका दिल से स्वागत है इस हसीन शाम में। दिल आज शायर है का अंदाज ही कुछ खास तरह से भाग गया। जी हाँ, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम सारिआं नूं इस प्रोग्राम दे विच जिहड़ा कि शुरू हो चुका है हुण FM रेनबो 102.7 FM रेनबो दे उत्ते ठीक 2:03 दे उत्ते, जिसदा नां है जी दिलाज शायर है। मैं तुहाडी दोस्त वंदना इस प्रोग्राम दे विच तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदी हां ते उम्मीद करदी हां कि तुसीं मेरे नाल इस सफर दे उत्ते, इस दिलां दे जज्बातां दे ते बहुत सारे इमोशंस दे सफर दे उत्ते मेरे नाल चलोगे ते इंजॉय भी करोगे गाणिआं नूं ते नाल नाल तुहाडे ही भेजे हुए मैसेजेस नूं। जी हाँ, क्योंकि ये प्रोग्राम जड़ा है ये दिलां दा ही, दिलां नाल दिलां नूं जोड़न वाला प्रोग्राम है, इस करके मैं उड़ीक रही हाँ तुहाडे मैसेजेस जिन्हां ने ट्यून इन किया है हुणे हुणे प्रोग्राम दिल आज शायर है दे विच 9855101027 दे उत्ते तुसीं अपने सोहणे सोहणे जे मैसेजेस भेजणे ने। मैसेज की होणगे, शेरो शायरी, जज्बात तुहाडे दिलां दे, जे किसे शायर

दो पल रुका यादों का कारवां, फिर हम चल दिए, तुम कहाँ मैं कहाँ। कहंदे हमारे बाद नहीं आएगा तुम्हें चाहत का मजा, हमारे बाद नहीं आएगा तुम्हें चाहत का मजा, तुम लोगों से कहते फिरोगे मुझे चाहो उसकी तरह। जी हाँ, 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है जी, दिलाज शायर है ते मैं उड़ीक रही हाँ तुहाडे सोहणे सोहणे जे मैसेजेस ते। एक चीज़ मैं होर कहनी है कि जदों भी तुसी मैनू मैसेज भेजना है, तुसी कोई लिंक नहीं भेजना, तुसी भेजना मैनू मैसेज दा स्क्रीनशॉट भेज सकदे हो, लिखिया होया मैसेज कितों दी है तां तुसी उहनू कॉपी करके मैसेज नू फॉरवर्ड कर सकदे हो, ते या फिर जे खुद लिखते हो तो अपने लिखे हुए मैसेज जी दे विच तां फिर उहदी वर्गी तां कोई गल ही नहीं है ना। कहिंदे जे साथ दियोगे तां मुस्कुरावांगे जरूर, जे साथ दियोगे तां मुस्कुरावांगे जरूर, प्यार दिल दे नाल करोगे ते निभावांगे जरूर, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕੰਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡੇ ਹੋਣ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡੇ ਹੋਣ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। जी हाँ, बहुत खूबसूरत जहा मैसेज भेजा लोहा बाजार मलेरकोटला राकेश कुमार जी ने साढ़े वास्ते, बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज भेजन लई प्रोग्राम दे विच अपनी हाजरी लगवाने दे लई। ते इस तो अगला मैसेज आया जी, सत श्री अकाल दिल शायर है विच मैडम वंदना जी, बलविंदर सरां पिंड मोरजंड सिखा तो हनुमानगढ़ तो यह मैसेज है। कहिंदे हम वो कश्ती हैं जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम वो कश्ती हैं जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम सबके हुए मगर कोई हमारा ना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज भेजन लई, बहुत सोहने सोहने मैसेजेस साढ़े कोलो आ रहे ने। ते जिन्हां ने हुणे ट्यून इन कीता है जी 102.7 FM रेनबो दे उत्ते प्रोग्राम चल रहा है दिलाज शायर है, ते तुसीं वी अपने सोहने सोहने मैसेजेस जिहड़े ने इस प्रोग्राम दे विच शामिल करा सकदे हो। नंबर है 9855101027 ਉੱਤੇ अपने सोहने सोहने मैसेजेस शेर ओ शायरी अपने दिलों के जज्बात जड़े ने मेरे नाल शेयर कर सकते हो। तो मैं हमेशा कहनी हाँ कि साढ़े बहुत सारे लिसनर्स इदा के ने जड़े सिर्फ सुनते हैं, जड़े साढ़े नाल कॉल के उत्ते भी घट ही गलबात करते हैं, तो उन्होंने वास्ते एक बहुत ही वधिया ए तरीका है साढ़े नाल राबता करन दा, साढ़े नाल जुड़न दा, साढ़े नाल अपने दिलों के जज्बात जड़े ने सांझे करन दा। इस करके इस प्रोग्राम दे विच तुसी जरूर अपने मैसेजेस अपने नाम ते अपने शहर के नाम के नाल मैनू भेज सकते हो। मैं उड़ीक रही हाँ तुहाडे मैसेजेस सोहणे सोहणे जे स्नेहे ते नाल ही सुनदे इस गीत नूं, ते गीत दे उस पार मैं उड़ीकांगी बहुत सोहणे सोहणे कुछ मैसेज जड़े तुहाडे वल्लों आणगे।

0: जरूर प्रोग्राम से शामिल।
1: फिर से तो भूल ले आया।
2: किसी की मैयत पे पड़े थे, उठा लाया।
1: किसकी मैयत?
2: मेरे जज्बातों की।
1: ओए होए पागल।

तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझे चाहेगा। माना कि मोहब्बत अब बस एक किस्सा है, माना कि मोहब्बत अब एक किस्सा है, पर मेरी रूह में आज भी तुम्हारा ही हिस्सा है। प्रोग्राम चल रहा है जी दिलाज शायर है, तो तुसी बने हुए हो अपनी दोस्त वंदना दे नाल, ते मैं उड़ीक रही हूँ तुहाडे मैसेजेस 9855 10 10 27 दे उत्ते। एक मैसेज आया जी, बरसे किनमिण किनमिण सावन, बरसे किनमिण किनमिण सावन, मैनू यादां तेरियां आवन, किथे तुर गया मार उड़ारी वे, साड़ी जिंद सूली ते चाड़ी वे। हाल पुछ लै कदे ता साड़े दिल तों बिमार दा, ए मौसम बहार दा ताने मैनू मार दा, जद कालियां कटावां अंबरी छावन, बरसे किणमिण किणमिण सावन, मैनू यादां तेरियां आवन। ये जी मैसेज आया है पाली प्याला हुशियारपुर तो, बहुत ही सोहना मैसेज, साढ़े रेगुलर लिसनर भी ने ते नाल नाल बहुत ही सोहने सोहने मैसेजेस भी हर प्रोग्राम दे विच भेजते हैं इस तरीके दे नाल अपने, ते बहुत बहुत शुक्रिया इन्ना प्यार दिखाण वास्ते ते इस तरह दे नाल साढ़े नाल लगातार बने रहन वास्ते। ते होर भी लिसनर्स जड़े सुन रहे ने ते जिन्हां नूं थोड़ा जिहा शर्म आंदी है जी गलबात करन दे विच फोन इन प्रोग्राम्स दे विच, बहुत सारियां फीमेल मैंबर्स भी ने साडियां जड़ियां सुनदियां ने, ते उन्हां दे विचों दी मेरी कई वारी गल हुई है कई फीमेल मैंबर्स दे नाल जड़ियां लिखदियां।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

कहिंदे तुमसे बात करने की तमन्ना, तुमसे बात करने की तमन्ना कब से मेरे दिल में थी। तुमसे बात करने की तमन्ना कब से मेरे दिल में थी।

लेकिन मेरी हसरत तेरी फुर्सत की तलबगार रही। कुछ इस कदर दिए हैं हसरते दीदार ने धोखे, वो सामने बैठे हैं यकीन हमको नहीं। एक खूबसूरत जहा मैसेज पे जय जी राम स्वरूप अरोड़ा चौंक चेलिया सुल्तानपुर लोधी तो बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज नू इस प्रोग्राम दे विच भेजन लई। ते मेरी एक होर रिक्वेस्ट है कि तुसी जड़े भी साडे लिसनर्स ने मैसेजेस भेज रहे ने एक टाइम दे उत्ते एक ही मैसेज जड़ा ओ रीड किया जाएगा। जे तुहाडा मैसेज रीड हो गया तां प्लीज़ तुसी सिर्फ प्रोग्राम नू इंजॉय करो, क्योंकि मौका जड़ा ना वो सारियां नू मिलना चाहिदा है। अच्छा कहिंदे लिखता विच है जिक्र तेरा,

आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार श्रोता साथियों, कैसे हैं आप सब? हमारी उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और जुड़ गए होंगे रेडियो डॉक्टर के साथ, क्योंकि समय हो चुका है, 3 बज चुके हैं दोपहर के और आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर आपके साथ है। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 4 बजे तक, और हर दिन हमारी कोशिश होती है कि कुछ नया, कुछ ऐसा जो आपको नहीं पता हो वो आपको जानने को मिले, और साथ ही साथ वो समस्याएं, वो स्वास्थ्य समस्याएं जिनसे आप जूझ रहे हैं या जिनके प्रश्न आपको मन में चल रहे होते हैं कि इसका जवाब मैं कहां से लूं, उसके लिए हम यहां पर आते हैं। और बिल्कुल हमें इंतजार होता है कि आप अपनी समस्याओं को हमारे सामने, यानी हमारे रेडियो डॉक्टर के सामने रखें और वो उसका जवाब दें। और हर बार, जैसा आप जानते हैं, हम एक विषय भी चुनते हैं, होम्योपैथी, एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपना विश्वास रखते हैं। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ इस जर्नी पर जो हमारी रेडियो डॉक्टर हैं, जो हमें गाइड करेंगी, वो हैं डॉक्टर चित्रा वासु। आप डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में कार्यरत है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर चित्रा आपका स्टूडियो में।
1: थैंक यू मैम।
0: तो आपने जान लिया, आपने सुना डॉक्टर चित्रा की आवाज, और डॉक्टर चित्रा हमारे साथ रहेंगी 4 बजे तक। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें बहुत सारे लोग अपना इलाज इस पद्धति से कराते हैं, और कहा जाता है कि अगर मूल रूप से या पूरी तरह से आपको किसी बीमारी को जड़ से दूर करना है तो होम्योपैथी की शरण में जाइए। ऐसा कई बार हमने सुना है, कितना सही है कितना गलत है ये तो जो बीमारी या उपचार लेते हैं वो बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारे पास, हमारे साथ स्टूडियो में एक होम्योपैथी स्पेशलिस्ट है, तो हम बहुत सारी चीजें डॉक्टर चित्रा से जानने की कोशिश करेंगे और जानते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी कार्य करती है। तो सबसे पहले हमारे एक श्रोता हमारे साथ ऑलरेडी फोन लाइन पर है, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी।
2: जी मैम नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए।
2: रवि बोल रहा हूँ सोनीपत हरियाणा से। मैम ये पूछ रहा था, जैसे कई लोग मानते हैं कि होम्योपैथी एक प्लेसेबो है, मतलब कोई इसका साइंटिफिक वो नहीं है, तो इस बारे में क्या कहेंगे?
0: जी ये तो वैसे कोई नहीं कहता है, लेकिन ठीक है, कुछ लोगों के अगर मिथ्स भी बहुत सारी होती हैं हर चीज से जुड़ी हुई, तो आज हमने इसको भी सुना है और डॉक्टर चित्रा बता रही हैं।
1: रवि जी नमस्ते, आपके ये जो सवाल है ना, साइंटिफिसिटी ऑफ होम्योपैथी, शालिनी जी मैं पहले ये बोलना चाहती हूँ, होम्योपैथी एक फिलोसफिकल ब्रांच ऑफ थेरापिटिक्स है, आधारित फिलोसफी पर है। सो नेचुरली मैं ये बोलना चाहती हूँ, होम्योपैथी ये एड्रेस करता है इलनेस को, बिकॉज इलनेस हमेशा एक एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस है, एंड हर एंटिटी को, हर चीज को दो एस्पेक्ट है, एक ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट और एक सब्जेक्टिव एस्पेक्ट, एंड मॉडर्न मेडिसिन इज ब्यूटिफुली एड्रेसिंग दैट ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट, मतलब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, बिकॉज इतनी अच्छी रिसर्चेस होता है, इतनी फ्रूटफुल स्टडीज होता है, रिजल्ट्स है ना, सो दे आर ब्यूटिफुली एड्रेसिंग दैट थिंग, एंड वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दैट थिंग। बट वॉट अबाउट द अदर एस्पेक्ट, सब्जेक्टिव एस्पेक्ट, बिकॉज बीमारी एक अस्वास्थ्य कंडीशन है एंड एक लिव्ड एक्सपीरियंस है, वो एस्पेक्ट को एड्रेस करना है होम्योपैथी का काम।
0: बहुत अच्छी सी बात, मुझे लगता है रवि जी तक आपकी जो बात है वो पहुंच गई होगी, कि आपने दो एस्पेक्ट्स बताए, और सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स को जब तक हम डील नहीं करेंगे हम बीमारी को मूल रूप से खत्म नहीं कर पाएंगे, कि अगर हमें स्थायी स्वास्थ्य चाहिए तो उसमें हमें होम्योपैथी बहुत मदद कर सकती है। और जहां तक एक साइंस की बात है, तो कोई भी पैथी हो वो साइंस पर ही आधारित है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और देखिए मैसेजेस भी हमारे पास आने शुरू हो गए हैं, और हमारी जो श्रोता है आलोका जी नोएडा से लिख रही हैं, ये हमारी रेगुलर श्रोता हैं, और ये लिख रही हैं आई बिलीव फुली इन होम्योपैथिक मेडिसिंस, डॉक्टर चित्रा आपको ये खास तौर पर नाम लिखकर भेज रही हैं। और अगर आप हमारे साथ, आलोका जी मुझे, मैं मान के चल रही हूं कि अभी आप हमें सुन रही होंगी, आप जरूर कोई वाकया हमारे साथ शेयर करना चाहें, क्योंकि आपने लिखा है कि आप पूरी तरह से बिलीव करती हैं होम्योपैथी मेडिसिन में, तो आप क्या लेती हैं और कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि सुनी सुनाई बातें, थोड़ा सा शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस, और भी श्रोता शेयर कर सकते हैं जो होम्योपैथी ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कि किस तरह से उसने किस बीमारी में उनको फायदा पहुंचाया है। हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो।
3: हेलो
0: जी।
3: हाँ जी, मैं रामदयाल मल्होत्रा बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी
0: जी मल्होत्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत जी।
3: हाँ, मुझे 6 बीमारी है जी।

0: 8 साल पहले मेरे को 4 स्टंट लगे थे और टांगों की नसों में मेरे को करीब 30 साल से दर्द रहता है। सब जगह मैंने एलोपैथिक इलाज किया है लेकिन फर्क 10% फर्क पड़ता है खाली 15% तक। हाँ जी, एक मेरे को साबुन लगते ही मेरी स्किन एकदम इतनी फटती है जैसे छिलके की तरह उतरती है स्किन मेरी साबुन लगते ही, नहाने में हाथ धोने में, तो वो बहुत परेशान हूँ जी मैं इन चीजों से। और साल में 2 बार मेरे नाक और मुंह में से खून आता है क्योंकि स्टंट लगे हैं मुझे 4, तो इसके बारे में क्या मैं होम्योपैथी का इलाज कर सकता हूँ
1: जी? अब डॉक्टर चित्रा आपको एडवाइस कर रही हैं।
2: नमस्ते रामदयाल जी।
0: हाँ जी
2: जरूर, बिल्कुल आपको इलाज मिल सकते हैं होम्योपैथी द्वारा, क्योंकि आपने खुद ही बोला इतनी सारा सिम्टम्स है आपको, है ना? सो एकदम से आपकी लाइफ भी बदल गई होगा इतनी यू नो इलेक्शन के बाद, सही है ना?
0: जी जी जी।
2: सो इतनी सारी चीज को एड्रेस करने के लिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी शालिनी मैम, सो इतनी सारी इलेक्शन को एक ही मेडिसिन से अगर हम,
3: मतलब इतनी सारी जो बीमारियां वो एक ही मेडिसिन से ठीक हो सकती
2: है? डेफिनेटली।
3: अरे वाह,
2: That's what I'm saying. We have to, देखिए ना, इतनी सारा कंप्लेंट्स आने से एक इंसान की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। Now he is aware about मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रहा है। पहले we were taking everything for granted। इंसान को मालूम नहीं था मैं कैसी सांस ले रही थी, कैसे मैं वॉक कर रहे थे, बिकॉज वी वेर एट ईज। पर एकदम से ये जो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस या इलनेस हुआ एकदम से बदल गए। सो दिस इज द प्लेस वेयर होम्योपैथी कैन एक्ट ब्यूटिफुली
3: जी। तो एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है कि कई बार क्या होता है जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं या किसी होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो बहुत सारे हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, सिम्टम्स के बारे में हमसे बात करते हैं, तो इतने सारे सिम्टम्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या ये दवाई बहुत एकदम प्रिसाइज बनाई जाती है?
2: इतना तो पूछना है क्योंकि आपकी जिंदगी की सच्चाई हमें ढूंढना है।
3: अच्छा।
2: एंड यू हैव टू एक्सप्रेस एवरीथिंग इन द मोस्ट फ्रैंक हॉनेस्ट वे। वो हमें हेल्प करता है क्योंकि आपकी मेडिसिन हमें ढूंढना है।
3: ओके,
2: सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
3: तो जो चीजें हमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं वो आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं क्योंकि दवाई उसके हिसाब से बनती है।
2: बिल्कुल। अच्छा। हमारे पास एक बुक है होम्योपैथिक मेट्री मेडिका, वो बिल्कुल पेशेंट की लैंग्वेज से लिखे हुए
3: हैं
2: ऑल द सिम्टम्स। सो इसलिए हम इतनी गहराई तक जा रहे टू एक्सट्रैक्ट द एसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बींग।
3: जी, बहुत सारी बातें हैं अभी जानने को और कार्यक्रम तो अभी शुरू हुआ है।
2: शालिनी जी, एक बीमारी आने वक्त है ना, सडनली मैंने हमेशा ये शब्द यूज किया, डिस्ट्रप्शन ऑफ द आइडेंटिटी, है ना? सडनली उनकी जिम्मेदारियां बदल जाते हैं, मीनिंग ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है, लाइक इनकी आइडेंटिटी पर एक डिस्ट्रप्शन हुआ, सो मेनी थिंग्स, है ना? सो वी हैव टू एड्रेस ऑल दोस थिंग्स। जो आप बोलने से हमें समझ में आता है कितनी चेंजेस आपके अंदर सब्जेक्टिवली हुआ।
3: जी, बहुत बहुत अच्छी बात और बहुत ऐसी बात है जिसको एक आपने बताया बहुत अच्छे तरीके से, तो इसलिए मैं भी कैच कर पा रही हूँ कि कई बार होता है कि होता तो फिजिकल एलिमेंट है लेकिन मेंटल लेवल पे भी वो हमको काफ़ी इफेक्ट करता है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ जो आप कह रही हैं कि उसको अगर हम होम्योपैथी के जरिए दवाई लेकर सॉल्व करें तो वो हमें मेंटल लेवल पर भी कहीं ना कहीं ठीक कर सकता है, है ना?
2: एब्सोल्युटली, बिल्कुल।
3: तो चलिए यहाँ पर अब एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लौट कर आएंगे, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं। आपको ये गीत बहुत पसंद है डॉक्टर चित्रा।
2: थैंक यू मैम।
3: तो हमने ये आपके पसंद का गीत निकाला है और देखते हैं हमारे कितने श्रोताओं को भी पसंद है। आप हमें लिखकर बता सकते हैं कि आपको भी ये गीत पसंद आया कि नहीं। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर. आज बात कर रहे हैं होम्योपैथी पर और हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आइए इनसे बात करते हैं. हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम.
0: जी. नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं वीना बोल रही हूँ फरीदाबाद से. आपको बहुत
0: जी,
1: बहुत डॉक्टर
0: आपको भी
1: साहब को भी नमस्कार.
2: थैंक यू वीना जी.
1: जी डॉक्टर साहब, मेरे को अभी करीब 6 महीने पहले ये ऑटो इम्यून डिजीज डायग्नोज हुई है.
2: कौन सी
1: और
2: ऑटो
1: मैं
2: इम्यून
1: और
0: डिजीज?
1: हाँ
0: डिजीज का
1: जी,
0: नाम पूछ रही हैं डॉक्टर साहब.
1: नाम तो नहीं पता. उसमें क्या है कि मेरा मुंह बहुत सूख जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है, आंखें भी ड्राई हो जाती हैं और
2: जॉकरेन
1: अजीब सी
2: सिंड्रोम,
1: फीलिंग होती है. हाँ
2: रूमेटॉइड
1: जी.
2: आर्थराइटिस.
1: और क्या कहते हैं, एक बार मेरी आंखों का लेजर से वो भी ट्रीटमेंट भी हो चुका है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरी आंखों में काला मोतिया आ गया, नसें सी बंद हो रही हैं. तो डॉक्टर साहब, मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर को तो दिखाया था, उन्होंने मुझे बोला कि जो ऑटोइम्यून डिजीज की जो स्पेशलिस्ट होती है उनको आप दिखाइए. तो इसमें कुछ है ऐसा ट्रीटमेंट?
2: बिल्कुल है. आर ए फैक्टर चेक किया था अपना, सीबीसी विद
1: शायद.
2: ईएसआर,
1: हाँ जी, हाँ जी, वो सब
2: एनडीसी,
1: चेक. हाँ
2: एनडीसीसीपी, ये सब चेक किया.
1: जी, सब चेक हुआ हुआ है, लेकिन वो ट्रीटमेंट भी मेरा चल रहा है. उन्होंने मुझे मेडिसिन भी दी है, लेकिन मेरे को, वैसे मेरे हस्बैंड को भी आर ए
2: आपको
1: फैक्टर
2: जोड़ों
1: की
2: में
1: प्रॉब्लम.
2: दर्द है? जोड़ों में?
1: नहीं, जोड़ों में इतना पेन नहीं होता जितना का मेरा मुंह इतना ड्राई रहता है. जैसे कई बार तो मुझसे बोला भी नहीं जाता है और मुंह में ना ऐसे ड्राइनेस की वजह से पूरे
2: जोग्रेन
1: जख्म
2: सिंड्रोम बोलते
1: जख्म हो
2: हैं.
1: जाते हैं.
2: बिल्कुल,
1: हाँ
2: मैं ये
1: जी.
2: बोलना चाहती हूँ, ऑटो इम्यून डिसीज है ना, एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है. एक्चुअली हमारी बॉडी की अगेंस्ट काम करते है ना.
1: हाँ जी, हाँ
2: अपनी
1: जी
2: बॉडी को
1: मैम.
2: दुश्मन समझकर
1: हाँ
2: एंटीजन
1: जी, हाँ
2: एंटीबॉडी
1: जी,
2: कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है,
1: हाँ
2: वो
1: जी,
2: वीक पॉइंट्स में जाकर डिपॉजिट करते हैं,
1: हाँ
2: फिर
1: जी,
2: हमें इतनी सिम्टम्स आते हैं. सो इसकी कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है आपके घर में किसी और को
1: नहीं
2: रहा?
1: नहीं किस

0: कॉमन नहीं है।
1: फिर आपके जो फैक्टर्स, मतलब कौन सी चीज़ से आपको ये सब हुआ, एक प्रॉपर डीप केस टेकिंग की आवश्यकता है या कुछ ट्रॉमा और लाइक दैट स्ट्रेस है ना?
0: हाँ जी बहुत है डॉक्टर साहब, इतना ज्यादा है ना मैं बता नहीं सकती। और मैं अब अजीब सी होती जा रही हूँ, मेरे को थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन सा भी रहता है।
1: ये मैं बोलना चाहती हूँ,
0: हाँ
1: सो
0: जी
1: वी हैव टू एड्रेस आपकी
0: हाँ
1: जो
0: जी
1: मेंटल स्फीयर,
0: हाँ
1: उधर की
0: जी
1: प्रॉब्लम्स, इमोशनल वेलबींग।
0: हाँ जी
1: सो
0: प्लीज।
1: मुझे लगता है वीना जी, आपको किसी होम्योपैथी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जितना प्रश्न और सिम्टम्स, जैसे मैंने इससे पहले बात भी की थी, बहुत सारे सिम्टम्स पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और सारी बातें डिटेल में डॉक्टर पूछता है, तभी कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो आप किसी, जिसको भी आप जानती हो, आप जा सकती हैं और वहाँ से हेल्प ले सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने आपको ये बता दिया कि हाँ, इसकी दवाई हो सकती है, आपको रिलीफ मिल सकता है होम्योपैथी में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और हमारे पास मैसेज आया है सुधीर सिंह जी का, कुतुबगढ़ से लिख रहे हैं, नमस्कार डॉक्टर साहब। और इन्होंने लिखा है कि एक मेरा प्रश्न है कि 200 और 1 m और q, इसमें से किसकी पावर ज्यादा होती है? अगर क्वालिटेटिवली बात करना चाहते तो नॉट क्वांटिटेटिवली, ओके मैम, क्वालिटेटिवली मैं असेंडिंग ऑर्डर में बोलती हूँ, पहले क्यू द टिंचर, देन 200, देन 1 m।
2: मतलब ये पावर के हिसाब से आपने बताया,
1: हाँ
2: तो 1 m सबसे ज्यादा क्वालिटेटिवली।
1: क्वालिटेटिवली।
2: ओके, तो सुधीर सिंह जी को जवाब मिल गया। और एक ये प्रश्न लिखा है अनीता तेजवानी जी ने, कि क्या जेनेटिक डिजीजेस जो होती हैं उसमें भी होम्योपैथी कारगर हो सकती है?
1: डेफिनेटली
2: जी
1: जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, क्योंकि ऑलमोस्ट हर डिजीज में 40% या 50% जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है। ये भी एड्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू गिव पूरी तरह की क्योर।
2: जानकारी देनी
1: हाँ हाँ
2: जरूरी है।
1: जानकारी एंड क्योर देने में है ना।
2: तो जैसे हमारे जो श्रोता हैं, बहुत सारे प्रश्न ऐसे कर रहे हैं कि क्या इस बीमारी में काम कर सकती है होम्योपैथी, या इसमें नहीं कर सकती है क्या, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ चुके हैं। तो क्या ऐसी कोई बीमारी है जो, जिसमें होम्योपैथी वर्क नहीं करती है कि सब पे करती है?
1: इसलिए जो कोई भी पेशेंट पहले आने वक्त है ना, वी हैव टू लिसन प्रॉपरली है ना, क्योंकि पहले डिसाइड करना है ये मेरे स्कोप में आते हैं या नहीं। सो इसलिए इतनी यू नो फर्स्टली हम पहले, मैं अपने बारे में बात किया तो ना, आई डायग्नोस व्हाट इज दैट पर्टिकुलर केस, एंड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अपने पेशेंट्स का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। मैं बोलती हूँ दिस इज नॉट कमिंग अंडर माई स्कॉप बिकॉज आई हैव टू एड्रेस सब्जेक्टिवली, मैंने पहले भी ये चीज़ बोल दिया। सो मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ जो सिम्टम्स से, एंड ऑफकोर्स एमरजेंसी सिचुएशंस वी कांट डील, वो एक फैक्ट है, एंड ओविंग टू द अनपैरेलल प्रोग्रेस इन मॉडर्न मेडिसिन वी ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन दैट थिंग, दैट इज अ फैक्ट।
2: जी, तो अगर कोई इमरजेंसी केस है या जहां ऑपरेशन की आवश्यकता है, उसको छोड़कर होम्योपैथी हर बीमारी में कारगर हो सकती है। लेकिन जरूरत है आपको सही एक स्पेशलिस्ट के पास पहुंचने की, और पूरी तरह से अपने सिम्टम्स, जैसा आपने बोला कि सब कुछ बताना है, छुपाना नहीं है, तो कई बार लोग पूरी तरह से बात बताते नहीं, और फिर ये कहते हैं कि हम पे वर्क नहीं कर रही है या हमको फायदा नहीं हो रहा है। तो आपको अपने सिम्टम्स पूरी तरह से बताने होंगे, और तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो
3: हेलो।
2: जी, नमस्कार राजेंद्र जी।
3: हाँ पहले तो शालिनी मैम को, शालिनी तो सही,
2: जी
3: नमस्कार,
2: नमस्कार,
3: और डॉक्टर साहिबा को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार।
1: नमस्ते, थैंक यू जी।
3: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। तो 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70 से 80 kg मेरा वेट है, ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है। तो अब मेरे 3 सवाल है और एक मिथ है। तो सवाल मेरा पहला ये है कि ये जो हमारे शरीर में कुष्ठ रोग की गांठें हो जाती है ना, और काले काले तिल हो जाते हैं जिनको काले धब्बे भी कहते हैं के रूप में, क्या इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है? दूसरा सवाल मेरा ये है, सिर के बाल से लेकर और पैर के नाखून तक ऐसी कौन कौन सी डिजीजेस जिसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और कौन सी ऐसी डिजीजेस का होम्योपैथी में ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है? तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने मिथ है सुना है कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उन्हें होम्योपैथी में ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। और चौथा और आखिरी जो सवाल है वो ये है कि ये मुझे जो है ना फैटी लीवर और क्या बोलते हैं इसके लिए एलर्जी की प्रॉब्लम इन दोनों, और ये स्लीप एपनिया डिसऑर्डर की, तो इससे मैं बड़ा परेशान हूँ। तो क्या इसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करके ही होगा कि दवाई लेने से ही हो जाएगा? तो ये मेरे 4 सवाल।

0: बड़ी मेहरबानी होगी, इनका जवाब दे, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। कोशिश करते हैं आपके सब प्रश्नों का यहाँ समाधान हो जाए। डॉक्टर साहब, जो तिल और गांठियों की बात की उन्होंने, क्या ये होम्योपैथी मेडिसिन से दूर हो सकती हैं?
2: देखिए शालिनी जी, ये सब बोल रहे हैं सब कनेक्टेड है, अपार्ट फ्रॉम जो पहले कुष्ठ रोग लेप्रसी, वो मैं बिल्कुल मेरी स्कोप में नहीं है।
1: नहीं, इन्होंने गांठे या तिल की बात की थी शायद कुछ,
2: पहले उन्होंने कुष्ठ रोग ऐसे बोला, बाकी सब कनेक्टेड सिम्टम्स है।
1: ओके,
2: सो डेफिनेटली वो एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा सकते हैं।
1: लेकिन एक चीज उन्होंने जो आखिर में पूछी कि क्या ये एडमिट होकर होता है या इनको होम्योपैथी का क्या इलाज एडमिट करके भी होता है?
2: हाँ, होता है। अच्छा, होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स आल्सो अंडर जीएनसी।
1: तो क्या उनमें कौन से पेशेंट्स को एडमिट करते हैं? क्या कुछ सीरियस पेशेंट्स होते हैं जिनको, तो क्या क्राइटेरिया होता है कि जो आप एडमिट करके करते हैं उनको?
2: नहीं मैम, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वो पेशेंट की सिम्टमेटोलॉजी, कितनी इंटेंसिटी से। सो अगर एडमिशन की जरूरत है तो बिल्कुल हमें एडमिट करना पड़ेगा
1: जी। तो यही जानना चाह रहे थे शायद कि इनको जो जो समस्याएं हैं उन्हें लगता है शायद एडमिट होकर होगा। और देखिए, ये हमें मैसेज जो हमने बात की थी, आलोका जी ने आपको शुभकामनाएं दी थी और लिखा था कि मैं होम्योपैथी पे पूर्णतः विश्वास रखती हूं। इन्होंने लिखा है कि मैं एलर्जी के लिए मेडिसिन लेती हूं, स्किन एलर्जी, पॉल्यूशन से गले नाक की एलर्जी के लिए, और महीनों पुराना ड्राई कफ 10 दिन के मेडिसिन लेने से मेरा चला गया। तो इन्होंने बताया है, और मैं वेदर, स्पेशली वेदर चेंज के समय जब एलर्जी मुझे लगती है तब मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेती हूँ, और एंजाइटी के लिए भी मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखकर भेजी है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी बात तो हम तक पहुंचाना, कौन सी समस्याओं के लिए आप होम्योपैथी ट्राई कर चुके हैं और आपको इससे फायदा हुआ है, आप हमें जरूर लिख सकते हैं। और हमारे पास एक कॉलर भी इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हेलो।
3: हेलो
1: जी,
3: नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: नमस्ते
3: डॉक्टर साहब, मेरी रेटिना खराब है और एलोपैथी में कोई इसका इलाज नहीं है, क्या होम्योपैथिक में इसका इलाज हो सकता है?
2: देखिए, एकदम से ऐसी बोल नहीं सकते, आई हैव टू सी योर रिपोर्ट्स, केस अटेंड करना पड़ेगा
1: जी।
2: रेटिना एकदम से खराब नहीं होगा ना, उसके पहले कुछ कारण हो सकते हैं।
3: रेटिना मेरी 40 वर्ष।
2: आप डायबिटिक हो या हाइपरटेंसिव?
3: नहीं, मेरी पैदाइशी रेटिना खराब आई थी।
2: पार्डन,
1: बाय बर्थ ही उनको ये समस्या है?
2: ओके।
1: तो फिर भी ये किसी होम्योपैथी स्पेशलिस्ट को दिखाएं तो फायदा हो सकता है इनको?
2: हाँ, देखिए जो इसके इफेक्ट्स को डील कर सकते हैं, जो बाय बर्थ है ऐसी यू नो मैलफॉर्मेशन है तो इट्स नॉट कमिंग अंडर द स्कोप।
1: ठीक है, धन्यवाद कॉल करने के लिए। और मैसेज में भी हमें बहुत सारे श्रोता जो हैं बीमारियों के नाम लिखकर भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इस बीमारी का इलाज हो सकता है कि नहीं। तो ये जो हमें लिखा है, रवि जी ने मेरठ से लिखा है, शालिनी जी और डॉक्टर साहिबा को नमस्कार, मेरे एक रिश्तेदार को ब्रेन ट्यूमर है जो इनिशियल स्टेज पर है, सीजर कभी कभी होते हैं, क्या होम्योपैथी की मेडिसिन इनको फायदा पहुंचा सकती है?
2: मैम, ये सब क्वेश्चन है ना, ऐसे एकदम से मुझे आंसर दे नहीं सकते। दे हैव टू गो टू द होम्योपैथ विद द रिपोर्ट्स। पहले मैं पहले भी बोल दिया, स्कोप के अंडर आते हैं नहीं आफ्टर चेकिंग द रिपोर्ट्स एंड ऑल, बिकॉज इट्स अबाउट द लाइफ है ना। सो बिल्कुल, क्योंकि
1: जी मैं आपकी बात समझ गई। मैं श्रोताओं तक बताना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब ये कह रही हैं कि अगर आपको कोई समस्या है उसका इलाज होम्योपैथी में है, सिर्फ आपको जाना होगा अपनी रिपोर्ट्स के साथ या फिर एक स्पेशलिस्ट से मिलना होगा और वो आपको बताएगा ये टेस्ट करा के ये रिपोर्ट्स लेके आना है, और तब वो बता सकेंगे कि आपको मेडिसिन दी जा सकती है और कितना समय लगेगा, कितनी डोज लगेगी, ये सारी बातों की बात उससे बात हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात सुनी है डॉक्टर साहब होम्योपैथी के बारे में, खासतौर पर जो मैंने शुरू में भी बोली कि अगर आपको जड़ से समाप्त करना है तो आपको होम्योपैथी करनी चाहिए, ऐसा कई लोग बोलते हैं। लेकिन बहुत सारी समस्याएं ऐसी भी होती हैं जो शारीरिक नहीं होती हैं, फिजिकल नहीं होती हैं, वो मानसिक भी होती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे अभी हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि क्या एंजाइटी में, डिप्रेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बताइए कि हाउ यूजफुल इज होम्योपैथी फॉर मेंटल एलिमेंट्स?
2: यस, मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक हेल्थी ह्यूमन माइंड को बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स अफेक्ट कर सकते हैं। एक तो बोर्डम, बोर होता है इंसान जल्दी, है ना। सेकेंड थिंग एंजाइटी, एंड थर्ड वन जो डिस्पेयर, हताशा,
1: डिप्रेशन,
2: डिस्पेयर, एक तरीके से यू कैन से इन दैट वे। सो दीज आर द 3 बेसिक प्रॉब्लम्स विच कैन अफेक्ट अ हेल्दी ह्यूमन माइंड।

0: बोर्डम क्या है? बोर्डम ऐसे कब होता है, एक इंसान को बिल्कुल मेंटल और फिजिकल स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है, एंड इट इज वेरी, सपोज एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन, वो आपको बिल्कुल स्टिमुलेट करेंगे इंटेलेक्चुअली, बट दैट इज नॉट परमानेंट, टेम्पररी है, ठीक है. सो बोर्डम आजकल बहुत यू नो लाइक
1: कॉमन हो रहा है.
0: एग्जैक्टली, दे डोंट नो व्हाट टू डू, और अपनी एथिकल सेल्फ पर ऐसे बैठ कर क्वेश्चन करता है, या अपनी ऑफिस बैग, मतलब सम पीपल है ना, वो क्या करता है, बस अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है ऑन द बेस ऑफ कैरियर ओनली, या सोशल अप्रूवल.
1: जी जी.
0: सो यू आर फीलिंग दैट आई एम लूजिंग माई सेल्फ इन द ऑर्डिनरी, दैट काइंड ऑफ फीलिंग. बट अनदर कंडीशन है, लाइक द अदर थिंग इज दैट एंग्जायटी. एंग्जायटी में क्या होता है, हमारी, अब मैं थोड़ी सी फिलोसफिकली बात करना चाहती हूँ, अपनी एथिकल सेल्फ और स्पिरिचुअल सेल्फ की कॉन्फ्लिक्ट है.
1: अच्छा.
0: एथिकल सेल्फ मतलब हाउ यू बिहेव, योर आइडिया अबाउट राइट एंड रॉन्ग, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ये आपकी एथिकल सेल्फ डिटरमाइन करता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर अपब्रिंगिंग, योर वर्किंग एटमोसफियर, हॉनेस्टी, लॉयल्टी एक्सेट्रा. एंड अगर दिस वन स्पिरिचुअल सेल्फ, मतलब दैट इज समवट बिगर, यू आर कनेक्टिंग, आप अपने आप को एक दूसरी लेवल में कनेक्ट करना चाहते हैं विद द नेचर. सो एंग्जायटी में क्या होता है, ये दोनों के बीच में एक टसल होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा. सो ये होम्योपैथी क्लियरली एड्रेसेस दिस काइंड ऑफ इश्यूज. एंड तीसरी वन, डिस्पेयर, वो एक टसल होता है फाइनाइट थिंग्स ऑफ लाइफ और इनफाइनाइट थिंग्स. मैं इजी एग्जाम्पल से समझना चाहती हूँ. लाइक हर हमको, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, एक दिन तो जाना पड़ेगा. बट अगर किसी को एक वरदान देता है 1000 साल इधर रहने की, वी आर अफ्रेड, क्यों? सो दैट इज द टसल, लाइक फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. लाइक वी आर ऑफिस की जॉब में ट्रैप्ड है हमेशा, लाइक यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट हु यू आर, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ. एंड एट द सेम टाइम इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट स्फीयर की टसल यही है, यू नो दैट आपको बहुत पॉसिबिलिटी है या पोटेंशियल है, बट कुछ एक्चुअलाइजेशन नहीं कर रहे, लाइक कॉन्क्रीट फॉर्म में लेकर नहीं आता है. सो यू आर लूजिंग योर सेल्फ इन द पॉसिबिलिटीज. सो ये बैलेंस चाहिए. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आजकल यही हो रहे हैं ना, पीपल आर बिकमिंग इल ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स.
1: बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी डिपेंड करती हैं, और शायद ये एक साइकिल है, शारीरिक स्वास्थ्य से मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य, इस पर और बात कर सकते हैं. हमारे एक कॉलर इस बीच में जुड़ गए हैं. हेलो.
2: नमस्कार मैम.
1: जी नमस्कार. जितेंद्र जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं.
2: डॉक्टर साहब, ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे लगभग 15-16 साल हो गए, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई है, 10% बची है. एक दवाई है कि जो रोशनी बढ़ सकती है वापिस मेरी.
1: जी जी.
2: कोई इलाज है?
0: आवाज ठीक से नहीं
1: है. हाँ, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आई नहीं है. मैं आपको बता देती हूँ कि ये आंखों की इनकी रोशनी जो है काफी कम हो गई है, बता रहे हैं 10% ही रह गई है. तो क्या इसको बढ़ाने के लिए कुछ दवाई आती है क्या?
0: कारण हमें ढूंढना पड़ेगा,
1: पर दवाई है ऐसी.
0: हाँ,
1: जी, आपको मिलना पड़ेगा डॉक्टर से और आपको दवाई दी जा सकती है, ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं. और हम अभी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे थे. एक मैसेज मुझे दिख गया है, सिक्किम से आया है, लिखने वाले हैं डेंजोपा, और इन्होंने लिखा है, नमस्कार दावा भूटिया सिक्किम से, और मैंने एंजाइटी की 6 महीने से होम्योपैथिक दवाइयां ली हैं पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है. एंजाइटी में होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन अच्छी हैं? तो मेडिसिन का नाम तो हम यहाँ नहीं ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है कि मैं 6 महीने से ले रहा हूँ, मुझे इफेक्ट नहीं हो रहा है. और एक और इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या होम्योपैथी और एलोपैथी ये दोनों दवाइयाँ एक साथ में ले सकता हूँ?
0: ले सकते हैं, बिकॉज दोनों की एक्शन अलग अलग है. एक तो क्वांटिटेटिवली एक्ट करता है, एक तो क्वालिटेटिवली. सो एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को एड्रेस करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट
1: ले सकते हैं. ऐसी कोई आप प्रॉब्लम में नहीं आएंगे?
0: मैं ऐसी नहीं बोलती हूँ मैम. लाइक आफ्टर टेकिंग द केस यूजुअली वी कैन डिसाइड, है ना.

0: दूसरे
1: मतलब
0: सब्जेक्ट
1: ले
0: में।
1: सकते हैं, ऐसी कोई आप प्रॉब्लम में
0: मैं
1: नहीं
0: ऐसी
1: आएंगे?
0: नहीं बोलती हूँ मैम, लाइक आफ्टर टेकिंग द केस यूजुअली वी कैन डिसाइड, है ना।
1: लेकिन
0: एंड
1: जैसे
0: आई
1: इनको असर नहीं हो रहा है, दवाई 6 महीने
0: सो
1: से
0: ही
1: चल रही
0: कैन
1: है।
0: गिव द रिव्यू टू द डॉक्टर, वो उनके डॉक्टर को मिलकर बात कर सकते हैं।
1: नहीं तो कभी कभी क्या इतना समय भी लगता है किसी बीमारी को एड्रेस होने में? जैसे 6 महीने हो गए हैं, इनकी एंग्जाइटी कम नहीं हुई है, तो कितना
0: सो
1: समय लगता है
0: रूट कॉज को
1: एड्रेस नहीं
0: एड्रेस
1: होने
0: नहीं
1: में?
0: किया होगा। सो इसलिए मैंने बोला ना, ही हैज टू एक्सप्लेन मैम इन द हॉनेस्ट वे टू द डॉक्टर।
1: जी बिल्कुल, बहुत सही बात है ये। तो भुटिया जी, आपको जाना पड़ेगा पुनः उन्हीं डॉक्टर के पास, या किसी और के पास जा सकते हैं और अपनी समस्या को पुनः एक बार एसेस कराइए। हो सकता है दवाई में कुछ बदलाव करना हो या डोज में कुछ बदलाव करना हो, लेकिन आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। यहाँ पर एक म्यूज़िकल ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और आपके और बहुत सारे प्रश्नों को हम यहाँ एड्रेस करेंगे, क्योंकि बहुत लाइन लग गई है मेरे पास मैसेजेस की और कंटिन्यूअसली हमारे फ़ोन भी रिंग कर रहे हैं। तो बस ये गीत सुनते हैं, क्योंकि ये आपकी पसंद का गीत है, बेहद पसंद है हमारी गेस्ट को, तो हम इस गीत को सुन लेते हैं और फिर वापस आते हैं।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर का ये अंक विशेष है क्योंकि आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, होम्योपैथी पर। और बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ चुके हैं, हमारे श्रोता भी हमारे साथ फोन लाइन पर कंटिन्यूअसली जुड़ रहे हैं। एक और हमारे कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार
2: मैम। डॉक्टर साहिबा को भी नमस्कार। और मेरे कुछ 3 सवाल है मैडम
1: जी। नाम बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: मैं संजय बात कर रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी सवाल पूछिए
2: मैम। पहला सवाल तो ये है कि जिन बीमारियों का इलाज अंग्रेजी दवाओं में, जितनी भी बीमारियां, क्या उन सभी बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में भी है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक हमारे साथी जिसका हार्ट फ्रैक्चर हो गया था 6 महीने पहले, लगभग 7 महीने मान लीजिए, तो उसका अंग्रेजी दवा से इलाज चल रहा है और लगभग आखिरी स्टेज में 20-25% और है। तो कुछ सलाह दोस्त लोग दे रहे हैं कि मतलब होम्योपैथी यहाँ से इस्तेमाल किया जाए थोड़ा और अच्छा रहेगा, तो इसके लिए मैं आपका सुझाव जानना चाहूँगा, क्या ठीक रहेगा नहीं रहेगा। तीसरा एक सवाल ये है कि होम्योपैथिक का असर इतना धीमा होता है, जैसे एक बीमारी थी जिसको अंग्रेजी डॉक्टरों ने मना कर दिया था इसका इलाज संभव नहीं है, होम्योपैथिक इस्तेमाल किया गया तो ठीक तो हुआ, धीरे धीरे 2-3 महीना लगा, लेकिन कम मतलब धीरे में असर करने की वजह से दवा छोड़ के चेंज कर दिया गया, मतलब खुद ही चेंज कर लिया हमने वो होम्योपैथिक का, फिर बाद में हमें उससे ज्यादा असर दिखा नहीं, तो क्या हम दोबारा उसी दवा पर वापस जा सकते हैं? इससे पहले ठीक अच्छा असर हुआ था। ये 3 सवाल है।
1: चलिए देखिए, बहुत सारी चीजें तो जो आपके सवाल हैं उसी में जवाब भी छुपे हुए हैं। खैर, डॉक्टर चित्रा आपको विस्तार से बताएंगी क्योंकि इन्होंने बोला डॉक्टर साहब की, इन्होंने खुद ही बोला कि हमें काफी फायदा हुआ, थोड़ा डिले या थोड़ा धीरे से फायदा होता है लेकिन फायदा हुआ, और इन्होंने छोड़ दिया। कई बार ऐसा

0: होता है कि कभी कभी बीमारी लंबे समय में या क्रोनिक हो जाती है, तो उसमें समय लगता है ठीक होने में, लेकिन हम बार बार रेटेड डॉक्टर में भी, यहाँ हमारे जितने गेस्ट आते हैं तो वो बताते हैं कि आप छोड़िए नहीं, मेडिसिन को पूरी तरह से छोड़ना नहीं है, आप डॉक्टर के पास फीडबैक लेके जाइए तो आपको सही इलाज मिलेगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में?
1: क्योंकि पहले मैं एक चीज़ साफ साफ बोलना चाहती हूँ, ये जो कुछ बीमारियां मैकेनिकल कॉज से जो होता है, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर, दे विल डील इट और द पेशेंट्स विल डील इट। हाँ, डिलेड हीलिंग है तो वी कैन गिव मेडिसिन, हमको मेडिसिन दे सकते हैं। सो नेचर ऑफ द डिजीज कॉज, वेदर इट इज मैकेनिकल और इन एनी अदर वे, ये मैटर करता है। ओके, द फर्स्ट मतलब क्वेश्चन को मैंने एड्रेस कर दिया। बाकी मैं एक हटे से बोलना चाहती हूँ, कभी कभी हमें सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन मतलब फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन एक्ट करने के बाद क्या करना है, कभी कभी पोटेंसी बढ़ाना पड़ेगा। लाइक पहले 30 दे दिया, नाउ ही वी हैव टू गिव 200 और वर्नम, ऑल डिपेंड्स अपॉन, अगेन यू हैव टू री इवेलुएट द सिम्टम्स, क्योंकि हमारी जो आप बार बार बोल रहे थे जड़ से खत्म करना, सो दैट इज अवर मिशन।
0: जी, और जैसे इन्होंने ये पूछा कि क्या हम दोबारा से उस मेडिसिन पे जा सकते हैं जो उन्होंने छोड़ दी थी, तो अगर ये पहले होम्योपैथी ले रहे थे और फिर उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन अब ये दोबारा से उसे शुरू करना
1: मे
0: चाहते
1: बी वी
0: हैं,
1: हैव टू चेंज द पोटेंसी
0: ओके,
1: नॉट द मेडिसिन,
0: बट इट विल
1: लाइक
0: वर्क,
1: यस,
0: इट कैन वर्क,
1: हाँ, इट
0: यस।
1: कैन वर्क।
0: तो ये मैसेजेस का सिलसिला शुरू करती हूँ, वैसे बहुत सारे मैसेज हमारे पास हैं। डॉक्टर चित्रा वासु मैम, मैं भी गोली नहीं पर लिक्विड बोतल द्वारा पेट की प्रॉब्लम से इलाज करा मैंने और बहुत फायदा हुआ। डॉक्टर साहिबा, मानसिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी का क्या महत्व है? नरदेव सिंह चौहान कोटद्वार उत्तराखंड से लिख रहे हैं। तो जैसे गोलियां दी जाती है होम्योपैथी की, तो क्या लिक्विड फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है जैसे इन्होंने लिखा है?
1: हाँ, टिंचर्स आर अवेलेबल मैम, क्यू फॉर्म में, वो एडमिसिबल है।
0: अच्छा, तो वो इक्विलेंट है, वो डिपेंड करता है
1: डिपेंड अप
0: कि
1: डिपेंड करता है।
0: किस चीज में क्या दिया जाएगा। यशपाल जी लिख रहे हैं द्वारका दिल्ली से, नमस्कार तुशाली मैम, मैं डॉक्टर चित्रा, नाइस टॉपिक। इनके क्वेश्चंस हैं कुछ कि क्या होम्योपैथी मेडिसिंस कैसे प्रिपेयर की जाती हैं, हाउ आर दे प्रिपेयर्ड, ट्रायल कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, एंड इन विच डिजीजेस होम्योपैथी मेडिसिन वर्क्स बेस्ट।
1: भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑफिशियल कॉम्पेंडियम रखा हुआ है, होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया, डिफरेंट डिफरेंट एडिशंस है, उसमें सारे चीज़ जो स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज़ के बारे में दे आर डीलिंग दैट थिंग।
0: जी, और कैसे इन्होंने लिखा है कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो जैसे बाकी मेडिसिंस
1: प्रिपरेशन के
0: होती
1: बारे
0: हैं।
1: में भी
0: जी
1: उसमें लिखा
0: जी
1: हुआ है।
0: जी और हमारे ये श्रोता हैं राजदीप सिंह इंदा मनोहर राजस्थान से, इन्होंने लिखा है कि मुझे 10 से 12 सालों से एसिडिटी की समस्या है और अब काफी हाई लेवल पे ये हो गई है, जिसकी वजह से मैं कुछ खा पी नहीं पा रहा हूँ, दुबला होता जा रहा हूँ, वजन नहीं बढ़ रहा है। क्या मैं होम्योपैथी मेडिसिन ऐसे ही शुरू कर सकता हूँ बिना कोई जाँच कराए और ये ठीक हो जाएगी? तो क्या ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं है। कभी कभी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन हो सकता है, वो हमें टेस्ट करना पड़ेगा।
0: लेकिन बिना टेस्ट के क्या मेडिसिन दी जा सकती है होम्योपैथी की?
1: अगर ओनली फंक्शनल सिम्टम्स है तो
0: अच्छा।
1: वी कैन एड्रेस,
0: जी।
1: बट वी हैव टू फाइंड आउट, हम क्योंकि जो अंदर क्या चल रहा है हमें मालूम नहीं है ना, सो व्हाट इज द टूल, टेस्ट है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन शायद इनके दिमाग में है कि होम्योपैथी की मेडिसिन ऐसे ही ली जा सकती है, तो टेस्ट वहां भी कराने पड़ते हैं। और ये हमें मैसेज लिखकर भेजा है मुजफ्फर अरमान, खुर्द पंजाब जिला मालर कोटला से। मैडम जी, मेरे पैरों में दर्द रहता है और मैं मेडिसिन ले चुका हूँ पर कोई फायदा नहीं हुआ है, क्या आप मेडिसिन का नाम बता सकती हैं? पर ये तो मैं बता देती
1: विदाउट
0: हूँ
1: टेकिंग द
0: कि
1: केस
0: जी, ये मैं आपको जवाब मैं भी दे सकती हूँ। वो
1: दीजिए।
0: इसलिए कि दवाई का नाम हम रेडियो डॉक्टर में नहीं बताते हैं, तो यहाँ भी नहीं बता सकते, सॉरी, आपको जाना पड़ेगा एक स्पेशलिस्ट के यहाँ। यहाँ हम ये कार्यक्रम अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, अगर आप कोई बात होम्योपैथी से संबंधित पूछना चाहें, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट बैठे हैं हमारे साथ, आपकी कोई मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई संशय हो, कुछ आपके मिथ हो, या कहीं से आपने कोई बात सुनी हो, या कोई बीमारी से संबंधित आपको कुछ बताना हो, पूछना हो, वो आप कर सकते हैं। पर हम दवाई यहाँ इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि दवाई जो है बहुत ही कस्टमाइज चीज है, उसके लिए बहुत सारे,
1: इंडिविजुअलिस्टिक
0: बिल्कुल, बहुत सारे सिम्टम्स और टेस्ट करने के बाद डॉक्टर बताते हैं, तो वो सब तो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज हमें लिखकर भेजा है परिधि ने दिल्ली से, लिख रही हैं वेरी गुड आफ्टरनून टू शालिनी मैम एंड डॉक्टर चित्रा।

0: मेरा क्वेश्चन है कि इज देयर एनी होम्योपैथी ट्रीटमेंट फॉर एलर्जी विथ कॉन्स्टेंट डस्ट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एंड राइजिंग पॉपुलेशन लेवल, इज देयर एनीथिंग वी कैन टेक ऑन अ रेगुलर बेसिस जस्ट टू कीप इम्यूनिटी हाई?
1: डेफिनेटली डेफिनेटली आई थिंक ऐसी वाला सिचुएशन में है होम्योपैथी की स्कोप.
0: ओके,
1: ब्यूटिफुली वी कैन हैंडल इट.
0: ओके ओके,
1: दैट इज व्हाट सस्टेनेबल केयर.
0: ओके, सो वेरी नाइस, आपका बहुत क्वेश्चन हमारे डॉक्टर साहिबा को पसंद आया है. तो इस तरह के केसेस में होम्योपैथी वर्क्स वेरी वेल, शी इज सेइंग. तो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग अस दिस क्वेश्चन. और तिरकी जी लिख रहे हैं पंजाब से कि ग्लूकोमा का होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है.
1: यस डेफिनेटली, बट अगेन आई एम सेइंग वी हैव टू
0: टेक द केस, पर ट्रीटमेंट है. चलिए हमारे श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो,
2: नमस्कार जी.
0: जी नमस्कार.
2: मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे किसी को थायराइड है तो होम्योपैथी में कोई इसे दवाई लेने से कोई फायदा होता है कि नहीं?
0: थायराइड का कुछ ट्रीटमेंट है?
1: सेवरल कैटेगरीज होता है ना थायराइड डिसऑर्डर्स में, थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स में. मैम आफ्टर टेकिंग द केस डेफिनेटली बेस्ड अपॉन द सिम्टम्स लक्षण के अनुसार डेफिनेटली है मेडिसिन.
0: जी, इसमें रिलीफ मिल सकता है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं. प्रकाश जी लिख रहे हैं रोहिणी दिल्ली से कि क्या बीपी शुगर का इलाज भी हो सकता है? तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप क्लियर करें कि क्या, जैसे हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि क्या बीपी में ले सकते हैं, क्या शुगर में ले सकते हैं, क्या थायराइड में, उन्होंने पूछा है, तो प्लीज बताएं.
1: हर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में होम्योपैथी बहुत बढ़िया काम करते हैं, सो डेफिनेटली मैम है.
0: जी, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं. हेलो,
3: नमस्कार जी.
0: जी नमस्कार, आप चलिए नाम बताइए.
3: जी, मैं यामिन भाई, रेडियो वाला.
0: जी जी यामिन भाई, स्वागत है, आप पूछिए क्या पूछना है आपको.
1: थैंक यू, नमस्ते जी.
3: मेरे को ये पूछना है मैम, जैसे कि हम पैसिव ट्रीटमेंट कराते हैं, क्या ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब आराम करती है? जैसे डॉक्टर का घर भरम बना हुआ लोगों के अंदर, लेट आराम होता है, बहुत लंबे पीरियड इलाज कराना पड़ता है.
0: जी, आपने खुद कहा कि ये भ्रम है, क्या ये भ्रम ही है? चलिए हम डॉक्टर साहब के मुंह से ही सुनते हैं, क्योंकि मेरा कहा तो आप लोग नहीं समझेंगे. क्या ये सच है कि झूठ है? जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं, ये मिथ है कि होम्योपैथी बहुत देर से इफेक्ट करती है, यानी उसमें बहुत समय लगता है इफेक्ट होने में, तो क्या ये सही है कि झूठ है, ये बताइए.
1: ये सच नहीं है.
0: यही मैंने कहा था, पर आपके मुंह से सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता. जी, तो अगर इफेक्ट आना है तो एक डोज से भी आ सकता है, राइट?
1: बिल्कुल
0: जी. तो ये आपको जवाब मिल गया यामिन भाई. और ये हमें मैसेज लिखकर भेजा है, नाम मुझे अभी नहीं दिख रहा है, लिख रहे हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे प्रिपेयर होती है हम बता चुके हैं, डाइल्यूशन एंड सक्सेशन, बहुत सारी इन्होंने पोटेंसीज की बात की है, वो तो अब हम नहीं ले पाएंगे, समय नहीं है हमारे पास इतना. लेकिन एक बात जो उन्होंने दूसरे श्रोता ने भी लिखी थी, होम्योपैथी को क्या दूसरे ट्रीटमेंट्स के साथ क्लब किया जा सकता है? डॉक्टर साहब ने बोला था किया जा सकता है. डॉक्टर साहब,
1: यस मैंने बोल दिया, क्योंकि दोनों के एक्शन अलग अलग है, क्वांटिटेटिवली और एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को एड्रेस करते हैं, और होम्योपैथी के हमेशा सब्जेक्टिव एलिमेंट्स को एड्रेस करते हैं और इटैक्स क्वालिटेटिवली. सो डेफिनेटली
0: मैसेजेस बहुत हैं, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा जल्दी से हम इनको ले लें, क्योंकि हमारे श्रोता बहुत उम्मीद के साथ हमें मैसेज करते हैं. हेलो डॉक्टर साहब, एंकर मैम को जय हिंद. मैडम जी, ऐसे ही प्रोग्राम में आप प्रस्तुत किया करिए, एलर्जी ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी की मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन अभी तक उतना आराम नहीं आया है, स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए क्या? तो मुझे लगता है ये अपने से ले रहे हैं, तो ये कहाँ तक सेफ है डॉक्टर साहब, होम्योपैथी मेडिसिन अपने से अगर कोई शुरू करे, इज इट सेफ?
1: इट इज रियली नॉट सेफ. Safe नहीं है, सेल्फ मेडिकेशन
0: इज नॉट सेफ. हाँ, बट आई थिंक उनके लिखने से मुझे लग रहा है कि उन्होंने लिखा है कि मैं हम ले रहे हैं पर हमें फायदा नहीं हुआ, क्या हम स्पेशलिस्ट से मिले? तो आपको मिलना चाहिए, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं. और ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, इन्होंने मैसेज किया है, वेरिकोज वेन्स के बारे में जानना चाहे कि इसका इलाज हो सकता है क्या, और कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी जानकारी हमें मिल रही है इस कार्यक्रम से. तो वेरिकोज वेन्स हो सकती है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है. और ये लिखा है रवि जोशी जी ने मेरठ से कि मुझे ब्रोंकाइटिस थी और होम्योपैथी मेडिसिन से काफी ठीक हो गई है, लेकिन थोड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ी. इन्होंने लिखा है कि मुझे इससे काफी लाभ हुआ है, तो बहुत धन्यवाद कि आपने ये शेयर किया हमारे साथ. होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद क्या खाएं क्या नहीं खाएं बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि अगर होम्योपैथी मेडिसिन हम ले रहे हैं उसके साथ हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखनी होती हैं?
1: 90% ऑफ केसेस में जनरली आई रिकमेंड टू अवॉइड कॉफी एंड कैम्फर. बाकी

0: यू टेक इन द केस, मुझे समझ में आता है वो पर्टिकुलर पेशेंट को कौन सी सब्जेक्ट को, मतलब आई मीन चीज को अवॉइड करना है, दैट कैन अफेक्ट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मेडिसिन.
1: और जनरल भी मैंने देखा होम्योपैथी में अवॉइड करने को ही कहा जाता है कॉफी एंड टी को, उसका कोई खास कारण होता है?
0: कॉफी कैम्फर.
1: अच्छा, तो क्या कारण?
0: एंटीडोट करता है मेडिसिन, बिकॉज इट्स वेरी जेंटिल.
1: ओके,
0: मेडिसिन्स आर वेरी जेंटिल.
1: और बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस अभी भी बाकी हैं. प्रवीण कुमार लिख रहे हैं विलेज दोहर जिला कैथल हरियाणा से कि 2013 में डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी, काफी दर्द रहता था. तो क्या इतनी पुरानी समस्या भी होम्योपैथी से ठीक हो सकती है? क्या क्रोनिक डिजीजेस या लॉन्ग टर्म डिजीजेस में भी इफेक्टिव होती है, ये जानना चाह रहे हैं.
0: आप ऐसे क्यों सोचते हो? पुराना सिचुएशन है आपके लिए, ये सब नया है ना. सो प्लीज, है ना, अपने डॉक्टर के पास जाइए और अपनी कहानी बोल दीजिए.
1: जी. और एक चीज और इन्होंने लिखी है, खाने पे भी इन्होंने कुछ पूछा है कि क्या आलू चावल खाने से शरीर में दर्द बढ़ जाता है? कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीजें होती हैं जो कई बार कहा जाता है, जैसे आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं ये खाइए नहीं खाइए, तो इसी तरह से होम्योपैथी में भी ऐसा होता है कि ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है?
0: हाँ, बिकॉज वन मैंस फूड इज अनदर मैंस पॉइजन. सो
1: जी,
0: हो सकता है.
1: तो आपको अपने शरीर को समझना होगा.
0: बिल्कुल
1: जी,
0: सेल्फ अवेयरनेस एज पार्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन.
1: जी बिल्कुल बिल्कुल. मेरठ से मैसेज कर रही हैं शचि त्रिहन, है लिख रही है मेरी बेटी को व्हाइट पैचेस की प्रॉब्लम है, होम्योपैथी में ट्रीटमेंट ढूंढना चाह रही हैं, आप बताएं इनकी मदद हो सकती है?
0: पहले तो बहुत जनरल वे में लिख दिया.
1: जी जी बिल्कुल.
0: बट डेफिनेटली
1: जी, तो एक अच्छी बात डॉक्टर साहब ने यहाँ इस कार्यक्रम में जो हम रहे कि होम्योपैथी लगभग जो आपने कहा कि फिजिकल अलग तरह की एक जो जहां पर ऑपरेशन की जरूरत है या हड्डी टूट गई उस तरह के प्रश्नों में आपने कहा कि वहां पर
0: इमरजेंसी
1: सिचुएशंस में छोड़कर बाकी सब बीमारियों पे होम्योपैथी कारगर है. लेकिन कंडीशन वही है, आपको एक स्पेशलिस्ट से मिलना होगा, अपने सब टेस्ट कराकर और सारे सिम्टम्स बताने होंगे. ये आपने इस पर काफी जोर दिया है. और चलते चलते कोई मैसेज देना चाहें आप हमारे श्रोताओं के नाम?
0: फर्स्टली आई एम, आपने सही बोला, होम्योपैथी इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक स्टैचर, जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, इतनी एसेसिबल, इक्विटेबल, सस्टेनेबल केयर प्रोवाइड करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द ग्लोब, ऑफकोर्स फॉर द नेशन एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ग्लोब. सो बिकॉज होम्योपैथी हमेशा एक इंसान की बेस्ट वर्शन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन पर काम करते हैं. मतलब अगर एक बंदा अपने बारे में, अपनी पोटेंशियल के बारे में इतनी पता चल गया तो naturally that can benefit our globe.
1: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मैसेज आपका रहा आज. तो अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारे साथ रही डॉक्टर चित्रा वासु, आप डायरेक्टरेट ऑफ आयुष डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में कार्यरत हैं. और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप समय निकालकर यहां आई हैं. इतने सारे जो प्रश्न आए हमारे पास, फोन कॉल्स आई, मैसेजेस आए, उन सबको आपने एड्रेस किया और आप यहां हमारे श्रोताओं से मुखातिब हुई. धन्यवाद आपको, नमस्कार. और अब स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार.
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जी हाँ दोस्तों, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो तुसी यो वाणी अपनी दोस्त RJ प्रिया
1: ते RJ हरनीत दे नाल।
0: ते दोस्तों हुण असीं अपने अगले सैगमेंट वल वध रहे हां जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सैगमेंट है, दिमागी दंगल। ते तैयार हो जाओ, बदाम बदूम तुसीं लैके बैठे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुझारतां आ गई हैं। ते इस दे नाल
1: बदाम भी लैके बैठे हैं ते मोबाइल भी लैके बैठे हैं।
0: कॉल किदां करनी है तुसीं? बिल्कुल। ते इस दे नाल ही साडी अज दी पहली बुझारत जिहड़ी है ओह हरनीत सानूं पुछेगी।
1: ओहो, मैं पुछां?
0: बिल्कुल।
1: ओहो, मैनूं लग्गिया सी तुसीं सिद्धा मेरे तो पुछोगे। ओके जी, ठीक है। जिवें प्रिया ने कह ही दिता कि मैं पुछांगी, तो पहला टेस्ट मेरे वालों दोस्तों, ध्यान दे नाल सुनना। तो पहली तुहाडी ये हैगी है, टंग ट्विस्टर तुहाडा है, समझ समझ के समझ नूं समझो, समझ समझना भी एक समझ है। आसान है, बड़ी सौखी है, मैं भी बोलती है तो मैं फिर तो रिपीट करती हूँ, समझ समझ के समझ नूं समझो, समझ समझना भी एक समझ है। तुसीं सानूं कॉल कर सकते हो 01812342174, 01812342174। इहदे नाल तुसीं सानूं फेसबुक मैसेंजर ते भी मैसेज कर सकते हो, आकाशवाणी जलंधर तुसीं सर्च करना है ते अपना नाम ते जवाब लिख के सानूं भेजना है। ते आओ गल्लां बातां करदे हां ते फिर सुनदे हां तुहाडे तों टंग ट्विस्टर्स।
0: देखदे हां कौन अज बिल्कुल सही जवाब दिंदा है बुझारतां दा, ते टंग ट्विस्टर नूं बहुत ध्यान नाल सही तरीके नाल बोलदा है। ते इस दे नाल एक प्यारा जिहा गीत सुनदे हां, उस तों बाद तुहाडे नाल कनेक्ट करदे हां।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज़ ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

नमस्कार, एफएमएन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी दा इजरंद्र केंद्र है। तुसी सुन रहे हो एफएम रेनबो दिल से दिल तक। शाम दे 7 बज गए ने ते हुन वेला हो रहा है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस दा। सरकार ने कहा पछमी एशिया विच चल रहे टकराव दरमियान घरेलू एलपीजी सिलेंडरां दी 100% सप्लाई यकीनी बनाई जा रही है। भारत सरकार ने अपने नागरिकां लई तुरंत आफत चेतावनी सेवा लई स्वदेशी तकनालोजी दी वरतों करदे हुए अपना सैल प्रसारण प्रणाली शुरू कीती है। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने उग्गे गीतकार लेखक अते संचार माहर प्रसून जोशी नूं भारत दे जनतक सेवा प्रसारक प्रसार भारती दा चेयरमैन नियुक्त कीता। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा मैंबर संदीप पाठक खिलाफ गैर जमानती धाराओं तहत FIR दर्ज कीती। बीजेपी ने इस नूं बदलाखोरी वाली सियासत करार दिता। कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा पंजाब जेलां अते सुधार सेवावां बिल 2026 आधुनिक मनुखी अते सुरक्षित जेल प्रणाली वल महत्वपूर्ण कदम है। बीती दिनी पटियाला नेड़े राजपुरा शंभू रेलवे पटड़ी नूं बंब नाल उड़ान दे मामले विच पंजवां मुलजम गिरफ्तार। कतर एयरवेज ने अमृतसर दे श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तो अपनियां रोजाना उड़ाना तो उड़ाना नूं मुड़ शुरू कीता। मौसम विभाग वल्लों पंजाब विच अज तो 5 मई तक गरज चमक नाल दरमियानी बारिश ते गड़ेमारी बारे येलो अते ओरेंज अलर्ट जारी कीता गया। अते IPL क्रिकेट विच चेन्नई सुपर किंग्स दा मुकाबला चेन्नई विच अज शामी 7:30 बजे मुंबई इंडियंस नाल

प्रोग्राम जिसका नाम है जी फिल्मी दुनिया। फिल्मी दुनिया ओ प्रोग्राम जिस विच रात 8 बजे तक असी करांगे गलबात सिनेमा दे नाल जुड़िया कुछ खास शख्सियतां दी। सिनेमा दे नाल जुड़िया शख्सियतां दी तां असी गलबात करांगे कि किस तरह उन्हां ने सिनेमा दे विच अपना योगदान पाया, नाल ही नाल फिल्मी गीतां दा जिहड़ा सफर है ओह भी चलदा रहेगा। जल्दी नाल तुहानू दस दिंदे हां कि अज दे इस खास प्रोग्राम दे विच जिथे 7-8 बजे तक तुसी मेरे नाल जुड़े रहोगे ते प्रोग्राम दा आनंद माणोगे, विच केड़े केड़े खास चीज़ां बारे करांगे असीं गलबात। प्रोग्राम दे विच सब तो पहला अज असीं गलबात करांगे एक अजिहे दिग्गज कलाकार दी जिसने सिर्फ भारतीय सिनेमा नूं ही बल्कि दुनिया दे ग्लोबल सिनेमा नूं सिनेमा दीआं बारीकियां दे गुर सिखाए। जी हाँ, सत्यजीत रे दे अज जन्मदिन के मौके पर उन्हां दी जिंदगी दे बारे कुछ खास किस्से कहानियां लैके हाजिर हाँ। तो उस तो बाद तुहाडे नाल मैं सांझा करांगी कुछ अजिहियां फिल्मां जो कि जिन्हां दी जिहड़ी प्रेरणा है वह हॉलीवुड फिल्मां तो ली गई है। ते फिर अज दे प्रोग्राम दे विच मैगे जी प्रोग्राम दे बारे पता चल गया तुहानू किहड़ियां किहड़ियां खास चीज़ां उपर असीं करनी है गलबात, पर प्रोग्राम दा आगाज मैगे जी एक गीत दे नाल ही होना चाहिए। जिवें कि गल कीती है कि अज असीं गलबात करांगे भारतीय सिनेमा दे दिग्गज लैजेंडरी डायरैक्टर जिन्हां दा नाम है सत्यजीत रे बारे, जिन्हां दा अज दे ही दिन 1921 दे विच कलकत्ता दे विच जन्म होया सी। एक अजिहा बच्चा जो अगे चल के सिर्फ अपने देश नूं नहीं बल्कि दुनिया दे वक्ख-वक्ख देशां नूं सिनेमा प्रेमियां नूं सिनेमा दे बारे कुछ खास बारीकियां जड़ियां है वो सिखाण वाला सी। बहुत सारे किस्से कहानियां सत्यजीत रे बारे साझा करांगे, पर पहला सुनते हैं जी प्रोग्राम का पहला गीत जिसनों आवाज़ दिती है मोहम्मद रफी ने।

दोस्तों उस साल से 1943 जदों रोए ने सत्यजीत रे ने डीजे कीमर कंपनी ज्वाइन की इतने उन्होंने जूनियर विजुअलाइजर का काम किया। एक ब्रिटिश एडवरटाइजिंग एजेंसी सी जिथे ब्रांडिंग दियां डिजाइनिंग दियां बहुत सारिया चीज़ा एडवरटाइजमेंट बारे सत्यजीत ने सीखिया। इतने काम करते रहे उदों तक जब तक उन्हां दी पहली फिल्म रिलीज नहीं हुई। इस तों कुछ साल बाद 1947 दे विच सत्यजीत ने कलकत्ता दे विच पहला फिल्म क्लब बनाया जिसका नाम रखिया बैटलशिप पोटेमकिन। इस क्लब दी पहली फिल्म सी। जिसे स्क्रीन प्ले रे ने ही लिखे सी ते कहा जाता है कि उस समय लोग इन्हां दियां फिल्मां नूं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते सी क्योंकि रे एक अगे वधन वाली सोच दे मालक सी। उस समय दे मुताबिक उन्हां दियां फिल्मां काफ़ी ज़्यादा एडवांस ते मॉडर्न हुंदियां सी। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਰਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਕਦਮ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

मैं कह जी हम हैं आपके दोस्त जोगी हाजिर हैं लेके प्रोग्राम फिल्मी दुनिया। दोस्तों अगली जिस फिल्म बारे तुहानू दसन जा रही है मेरी तो भाई ए फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है सत्ते पे सत्ता 1982 दी फिल्म एक्शन कॉमेडी जिसनु डायरेक्ट किया राज एन सिप्पी ने ते स्टार कास्ट दी गल करिए तो बॉलीवुड दे बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन ते उन्हां दी केमिस्ट्री नाल देखण नु मिली हेमा मालिनी दे। कहानी बेस्ड है रवि अनंत दे उत्ते जिस दे 6 भरा ने ते किस तरह ओ एक अनसिविलाइज्ड जड़ी है जिंदगी गुजारदे ने जिंदगी घर दे विच 7 भरावां तो इलावा कोई भी औरत उन्हां दे नाल नहीं रहिंदी ना कोई भैन ना कोई मां ते फिर एंट्री हुंदी है हीरोइन दी कहानी दे विच ते किस तरह हीरोइन दी एंट्री दे नाल मैं कहिंदी घर साफ सुथरा हो जांदा ते 7 भरावां दी जिहड़ी जिंदगी है ओह सुधर जांदी है ट्रैक ते आ जांदी है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1954 दी हॉलीवुड म्यूजिकल 7 ब्राइड्स फॉर 7 ब्रदर्स तो बॉलीवुड दी कहानी विच हालांकि तब्दीली की गई सत्ते पे सत्ता जदों बन रही सी जो ओरिजिनल फिल्म सी उस विच अमिताभ बच्चन यानी कि रवि का कोई डबल रोल नहीं होंदा पर बॉलीवुड दे विच असीं देखदे हां बिग बी दे डबल रोल मैं कहिंदा जिथे वो एक रोल दे नाल ही दर्शकों का दिल जीत लैंदे ने उत्थे सपोज करो फिल्म दे विच दो अमिताभ बच्चन ते क्या ही जादू सिनेमा दे विच होया होएगा जद फिल्म रिलीज हुई। सत्ते पे सत्ता फिल्म दूसरियां होर भाषावां दे विच भी बनाई गई मराठी ते सिन्हाला विच भी फिल्म बनी। फिल्म दी कहानी बाकमाल है जो कि अज भी सानू याद करा दिंदी है कुछ खास लम्हे ते आओ फिर सुनते हाँ इस फिल्म दा ही गीत आवाज है जी आशा भोसले किशोर कुमार आ जी ते भूपिंदर दी

एफएमएन 102.7 मेगाहर्ट्ज से आकाशवाणी जलंधर का रेनबो चैनल है। रात दे 8 बज रहे नीति वेला हो रहा है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

हाँ जी, मैं जी कल ना एक इंस्टाग्राम ते रील्स स्क्रॉल कर रही सी। रील्स स्क्रॉल करते करते मैं क्या जी एक रील जिहड़ी है वो जद ही मेरे कन्नां दे विच उस रील च एक लेडी सी वो कुछ टिप्स दस रही सी कि किस तरह सानू अपनी बॉडी ते जिहड़ा है खास तवज्जो जिहड़ी है देनी चाहिए है। ते बस फिर वो टिप्स जिहड़े है मैं सुने ते मैं फटाफट नोट कर ले। मैं क्या जी जाके अपने दोस्तों नू प्रोग्राम नेटवाणी दे विच जरूर दसने है, क्योंकि जो मेरे वास्ते फायदेमंद हो सकते ते दोस्तों वास्ते भी बहुत फायदेमंद हो सकते ने। दोस्तों जदों उम्र जिहड़ी है समय दे नाल बीतदी है, जदों 30 तो वध साडी उम्र हो जाती है ते अक्सर सानू बहुत ज़्यादा ना चिड़चिड़ापन महसूस हुंदा है। छोटी उम्र दे विच भी हो सकदा है, अजकल छोटी उम्र दे विच पै जांदा है, पर ध्यान देने वाली गल ये है कि अगर तुसी हर वक्त जिहड़ा है महसूस करदे हो कि तुसी इमोशनली अपने आप नू कमज़ोर महसूस कर रहे हो या फिर मेंटल एनर्जी तुहाडे विच जिहड़ी है घटती जा रही है, तुसी काम ते फोकस नहीं कर पा रहे, हर वक्त जिहड़ा है गुस्सा, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां है तुहाडे अंदर, ये सारी इमोशनस जिहड़े ने हाई अमाउंट दे विच रहिंदे ने, इक वड्डी गिनती दे विच इमोशनस रहिंदे है, दैट मीनस तुहाडे अंदर B12 जिहड़ा है उसकी कमी है। तो सब तो पहले जाके तुसी की करना है, अपना B12 जिहड़ा है एक डॉक्टर कोल जाना है, B12 का टैसट करवाना है। उस बाद मैं कह जी जेकर इमोशनल वीकनेस तो इलावा इलावा तुहानू एनर्जी जिहड़ी है अपने विच घट महसूस हुंदी है, काम करन नू दिल नहीं लग रहा, ये गल मतलब बिल्कुल नहीं है कि जब आप अक्सर कई बार तो आलस के मारे कह दें कि यार काम नहीं करने का मन कर रहा, बट अगर तुहाडे विच ये हर वक्त ही इमोशन रहिंदा है कि काम करने का मन नहीं है, तुसी उदास निराश जड़ा है महसूस करते हो अंदर एक अजीब जी भावना, तो तुहाडे अंदर विटामिन डी की जड़ी है कमी हो सकती है, विटामिन डी का टैसट जड़ा है करवाना चाहिए। सियाने कहते हैं सवेरे छेती उठना चाहिए, ये पिछे भी मैं क्या साइंस है, क्योंकि हुन विज्ञानिक भी कह चुके हैं कि जदों से सवेरे छेती उठ के सब तो पहला सूरज की रोशनी विच जाने ना तो साढ़े दिमाग दे विच कुछ इंपोर्टेंट जड़े आ हॉर्मोन जड़े आ रिलीज़ होंगे है, क्योंकि वो सवेरे सन दी लाइट यानी कि सूरज की रोशनी दे विच सानू मिलते हैं, जिस दे नाल विटामिन डी की जिहड़ी कमी है वो तो पूरी होंगी है, साडियां हड्डियां विच भी ताकत आती है, तो नाल ही नाल जिहड़े लो मूड हुंदा ना ये भी मैगे जी गायब हो जाता है। इस तो इलावा तीसरे नंबर वाली चीज़ ये है कि तुसी अपने आप नू किस तरह मोटिवेशन रख सकते हो, क्योंकि मोटिवेशन इनर मोटिवेशन जी अंदरों आती है बहुत जरूरी होंगी जिंदगी सफल होने वास्ते।

मैं किसी डाइटिंग कर रही हूँ तुसे भी जी कर रही हूँ तो चंगी गल है पर जो नहीं कर रही हूँ तो बिना डाइटिंग किते भी तुसे अपने आप नूं फिट एंड हेल्दी रख सकते हो किवें एक इवें जवाब छुपया है अगली जिहड़ी है इनफॉर्मेशन दे विच अगली खबर जिहड़ी है मैं कह जी सोशल मीडिया की जेकर असीं गल करिए तां वख वख चीज़ां जिहड़ियां है वायरल वीडियोज़ रहिंदियां कदे किसी चीज़ का ट्रेंड ते कदे किसी चीज़ का इहदे विच ही एक कैमोमाइल चाय जिहड़ी है मैं कह जी हमेशा ही जिहड़ी है ट्रेंडिंग दे विच रहिंदी है कैमोमाइल चाय ये असी घर बैठे ही बना सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती क्योंकि ये जी है कैफीन नहीं होंगी कैफीन फ्री चाह होंगी है जिस करके थोड़ी सेहत वास्ते अच्छी होंगी है इनू असी आसान भाषा में हर्बल चाह भी कह सकते हैं जिद बहुत सारे फायदे छुपे हुए हैं जिमें कि अगर तुहानू नींद नहीं आती रात नूं चंगी नींद लेना चाहते हो लंबी तो चाह पी सकते हो इस

जी, कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम दिल चाहता है देवीच अगली फरमाइश लेके हाजिर हुए ने कृष्ण कुमार डाबे, भूपत कुमार तेरादा तंवर, सिंदरी जिला बालोतरा राजस्थान तो। फरमाइश है जी इन्हों की फिल्म कश्मीर की कली का कहते गीत सुना दिता जाए। ठीक है जी, तुहाड़ी फरमाइश जरूर पूरी की जाएगी, पर इस नाल ही नाल मैसेज सानू आदर्श नगर मलोट तो भी आया, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी शर्मा, सौरव, साइना ते निवान दा। सीकर राजस्थान तो दातार सिंह शेखावत, संगीता कवर तुषार सिंह ते रिंकी शेखावत, धन्यवाद धन्यवाद। पिंड बनवाला हनवंता फजिलका तो विनोद, मयाल, सीमा, लक्षिता, यशिका, माता विद्या देवी ते सारा मयाल परिवार लिखदे किसी भी गीत विच शामिल किया जाए। एक होर मैसेज आया जी सानू कुड़ाली पीओ नगेंद्र नगर जिला श्री भूमि असम तो। मैसेज भेजने वाले का नाम है जी हितेंद्र दास, बहुत बहुत शुक्रिया। ते लो जी फिर इन्हां सारे दोस्तों की रली मिली पसंद से सुनते हाँ फिल्म कश्मीर की गली, गीतकार

नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज, नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका तो रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश ते डॉक्टर मदन लाल वर्मा किसी भी गीत विच शामिल होने वास्ते कह रहे ने। गाँव कमंडिया सूरतगढ़ तो जगदीश टुकिया, प्रमिला, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु ते शिवम दा मैसेज आया। लिखते ने राजकुमार फिल्म का कोई भी गीत सुना दिता जाए। इस नाल ही नाल पिंड वड़िंगखेड़ा जिला श्री मुकतसर साहिब तो पोला सिंह सिद्धू, लाडी तालीवाल जलंधर तो मास्टर मोहन लाल शौंकी, अरविंद कुमार का भी मैसेज आया जी। कनेरा मोहल्ला पटियाला तो मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, कीतू, निहारिका, हार्दिक पंच मैसेज भेज रहे हैं। तो इन्हों की फरमाइश आई है जी, एक प्रोग्राम के इन्होंने चार मैसेज भेजे है। तो लो जी फिर इन्ने सारे मैसेजेस अगर इन्होंने भेजे है तो लो जी फिर इन्होंने फरमाइश पूरी कर ही दिने। हाँ तो इन्हों की फरमाइश है जी, कहते मन फिल्म का जोड़ा है गीत सुना दिता जाए, आवाज़ उदित नारायण ते अलकार याग्निक की। तो लो जी फिर गीत का आनंद मानो, तो इन्हों के नाल ही ना तुम भी इंजॉय करो प्रोग्राम का अगला गीत।

नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन जी आया नू। प्रोग्राम शामी गजल विच सारे ही दोस्तों का इस्तकबाल करते हाँ। चेहरे ते मिठी जी मुस्कान, दिल विच जोश ते दोवे हाथ जोड़ के प्रोग्राम शामी गजल का आगाज हो चुका है। तुहाडे दोस्त आरजी निहर लहंदना। शनिचरवार की रात है, वो रात जब मन दे विच एक अलग ही सुकून है। सुकून क्योंकि शनिचरवार का जड़ी शाम होंदी है, शाम तो समा साडा होंदा है। कोई दफ्तर नहीं, कोई कॉलेज नहीं, समा ये साडा खास, साडा अपना, साडा अपने दा होंदा है। प्रोग्राम शामे गजल दे विच गलबात करदे हाँ असी इंसान दे वख वख जज्बात दी, एहसास दी, प्यार दी, मुहब्बत दी, इश्क दी। आज वे गलबात करांगे इना ही एहसासां दी, जज्बात दी, मुहब्बत दी, इश्क दी, हकीकी दी। प्रोग्राम शामे गजल सुनियो तुसी। निदा फाज प्रवीण शाकिर, प्रवीण शाकिर एक बड़ी मशहूर गजल है, वो महबूब नो खुशबू दे विच बयान करती है। लिखते हैं, वो तो खुशबू है, वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है कि वो किधर जाएगा। प्रोग्राम शामी गजल दी पहली गजल पेश करन जा रहे हैं आवाज चंदन दास।

मोहब्बत है या नफरत, इस दा एहसास किते ना किते करवांदियां ने अखां। अखां कहिंदे ओह दरवाजा है जिस तो होके दिल तक पहुंचा जा सकता है। अखां तो जद कोई बंदा अखां नूं इस नज़र नूं पांदा है, पसंद आंदा है, ते दिल दी जिहड़ी दूरी है ओह काफ़ी घट जांदी है। पर जेकर कोई अखां तो शख्स उतर जाए, ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਦਾਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਹੈ, ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਹੈ ਪਰ ਆਂਖ ਨੇ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਅਭੀ, ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਹੈ ਪਰ ਆਂਖ ਨੇ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਅਭੀ, ਵੋ ਬੁੱਤ ਜਿਸੇ ਕਿ ਮੇਨੇ ਤਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਭੀ। लफ्जों के पत्थरों में सनम बेशुमार हैं, मेरे ही पास सोच का तेशा नहीं अभी। प्रोग्राम शामे गजल दी, अगली गजल आवाज चित्रा सिंह दी।

मेरी कहानी बस इन्नी है कि उसका दिल कदे मेरा ना होया ते मेरा दिल किसी होर दा ना होया। प्रोग्राम शामे गजल सुन रहे हो तुसी अपनी दोस्त आरजे नेहा रलहन नाल। जिंदगी दे सफर दे विच हर एक एहसास महसूस करना बहुत जरूरी होता है। अगर प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, उथे थोड़ी नाराजगी, थोड़ा इनकार, थोड़ी बेचैनी, तो बहुत ज्यादा सबर दा होना बहुत जरूरी है। अगर ये सब मौजूद है तो जिंदगी जिंदाबाद है। प्रोग्राम शामी गजल दी अगली गजल पेश करन जा रहे हैं। सुबला फिगार उनावी साहब दी गजल है। लिखते ने, जफाए यार को हम लुत्फे यार कहते हैं, खिजा को अपनी जबा में बहार कहते हैं, वो एक सुनते नहीं हम हजार कहते हैं, मगर फसाना बहर इतबार कहते हैं। प्रोग्राम दी आखरी गजल गुलाम अली साहब दी आवाज़ दे विच पेशे खिदमत।

बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है, आ जाए हो तो दिल की हर एक बात कहेगी। FMN 102.7 MHz ते आकाशवाणी जलंधर द आई रेनबो चैनल तुसे सुन रहे हो अपनी दोस्त आरजे निहारल हदिना। रात दे 10:30 बज चुके ने, प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है लेके हाजिर हाँ स्टूडियो दे विच, जिथे थोड़ी बहुत गलबात करांगे, तो बहुत सारे हिंदी नगमे सुनांगे। जाना कितने नहीं है तो हाडा तो मेरा साथ 11 बजे तक इंच ही बनिया रहेगा। सुनो कुछ कहना है, सुनो कुछ कहना है, आज की रात कुछ कहना है, मगर रुको जरा, इतनी जल्दी भी है क्या?

उसका ख्याल आया, उसका ख्याल आया अपने ख्याल से, अब वो भी अपने याद में शामिल नहीं रहा।

उसके आने की खबर जो आई, उसके आने की खबर जो आई, इतनी खुशहाली है, डर लगता है, डर लगता है कि जब वो पहुंचेगा शहर तो क्या हाल होगा इस शहर का।

जरा कोई पूछे बहार के बारे, जरा कोई पूछे बहार के बारे, तो कह दूं उससे तेरे मेरे साथ की घड़ी पल भर की।

दिल में है अरमान कमसिन के लिए, दिल में है अरमान कमसिन के लिए, जी रहे हैं सब उसी दिन के लिए। ज़र्फ़ पे था मेरे शायद शक उन्हें, ज़र्फ़ पे था मेरे शायद था शक उन्हें, दोस्तों ने बदले गिन गिन के लिए।